0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। तवील अरसे तक आमिराना हुक्मरानी के बाद इस्तेहकाम और तरक्की के हुसूल के लिए शाम की कोशिशों की हिमायत की गरज से जापान ने उस पर आयद करदा अपनी पाबंदियां जुज़वी तौर पर हटाने का फैसला किया है। हुकूमत जापान ने इस पॉलिसी की मंजूरी मंगल के रोज़ काबीना इजलास में दी। 59 अफराद और 31 इदारे जिन पर असासे मुंजमित करने जैसी पाबंदियां आयद हैं उनमें से 16 इदारों को पाबंदियों की फहरिस्त से निकाल दिया जाएगा जिनमें मालियाती इदारे और तेल कंपनियां शामिल हैं। काबीना के चीफ सेक्रेटरी किहारा मिनोरू ने नामा निगारों को बताया कि पाबंदियों की फहरिस्त से निकाले जाने वाले कई इदारों से तवक्को है कि वो शाम की तामीर नो में किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि शाम में इस्तेहकाम और तरक्की का ताल्लुक बराह रास्त पूरे मशरक़ वुस्ता के इस्तेहकाम से है। उनका मजीद कहना था कि जापान इस मुल्क की मदद का इरादा रखता है। मगरबी ममालिक में शाम पर पाबंदियों में नरमी का इकदाम जोर पकड़ रहा है। असद खानदान की दो नस्लों की निसफ सदी से ज्यादा मुतकोलिनान हुक्मरानी के दिसंबर 2024 में खात्मे के बाद एक उबूरी हुकूमत शाम की तामीर नो के लिए काम कर रही है। जापानी कंपनियां इंसान नुमा रोबोट के कारोबार को वसत देने के लिए चीनी कंपनियों के साथ इश्तराक कर रही हैं। ये इकदाम ऐसे वक्त में सामने आया है जब चीन में इस टेक्नोलॉजी की तरक्की तेजी से हो रही है। चिप बनाने वाली कंपनी रोनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स ने अगस्त में बीजिंग में तहकीक और तरक्की का एक मरकज कायम किया। जापानी कंपनी चाहती है कि मकामी कंपनियों के साथ मिलकर इंसान नुमा रोबोट्स को कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजी तैयार और इसकी आजमाइश की जाए। रोनेसास इलेक्ट्रॉनिक के नायब सदर ईवो मोरोको ने कहा कि चीन का इंतखाब इसलिए किया गया क्योंकि वहां इस शोबे में तेज रफ्तारी से काम करने वाली बहुत सी कंपनियां हैं। उन्होंने कहा कि इसका मकसद इस रफ्तार और मकाम से फायदा उठाना है। मार्च में मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के ने एक ऐसी स्टार्टअप कंपनी में सरमायाकारी की जो मसनूआत साजी के लिए इंसान नुमा रोबोट बनाती है। रोनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स की कोशिशों का मकसद सनती रोबोट्स तैयार करने में मित्सुबिशी के तजर्बे से इस्तेफादा करना है। जापानी कंपनी का कहना है कि ये रोबोट्स चीन में फैक्ट्रियों में बगैर इंसानी अमले के काम के दौरान मवाद मुंतकिल करने और मसनूआत की जांच कर सकेंगे। इंसान नुमा रोबोट्स की हमवार हरकत यकीनी बनाने के लिए बहुत ज्यादा डेटा की जरूरत होती है, लेकिन कहा जाता है कि इस तरह के अमल में कुछ वक्त लगता है। मजकूरा कंपनियों को उम्मीद है कि चीन की वसी मार्केट में डेटा इकट्ठा करने से तरक्की के अमल में तेजी आएगी।
1: और सामईन, आखिर में आज की अहम खबरों का खुलासा। शुमाली से मगरबी जापान तक के वसी इलाकों में बारिश हो रही है। वसी टोक्यो में मुसलसल 34 दिन बारिश हुई है जो अब तक के रिकॉर्ड पर बरसात की तवील तरीन लहर है। चीन की हुकूमत ने अमेरिका के साथ अपने हालिया तजारती मुजाकरात की तफसीलात जारी कर दी हैं। उसने कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती जंगबंदी में 2 माह तक की तौसी की जाएगी। शुमाली कोरिया के एक सिफारतकार ने कहा है कि जौहरी हथियार रखने वाली रियासत के तौर पर मुल्क की हैसियत नाकाबिल तंसीख है। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 30 सितंबर बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रिला जैन और वायला खवानों से सुने समाचार। उष्णकटिबंधीय तूफान सुरिगे बुधवार रात से बृहस्पतिवार सुबह तक मध्यवर्ती टोक्यो के दक्षिण में इजू द्वीप समूह के निकट पहुंच सकता है। तूफान के आने से पहले ही इजू द्वीप समूह पर वर्षा मेघ छा गए हैं, जिससे हाचीजोजीमा द्वीप पर सुबह 10:30 बजे तक 31.5 मिलीमीटर प्रति घंटे की तेज बारिश हुई। क्षेत्र में समय के साथ हवाओं के तेज होने की संभावना है, ऊंची लहरों की भी आशंका है। द्वीप समूह के दक्षिणी भाग में बुधवार रात से लेकर सुबह तक गरज के साथ 50 मिलीमीटर प्रति घंटे की मूसलाधार बारिश का अनुमान है। क्षेत्र के निवासियों से ऊंची लहरों और भूस्खलन के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया जा रहा है। तेज हवाओं, वज्रपात और बवंडरों के प्रति भी सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। टोक्यो के पास चीबा प्रीफेक्चर में बृहस्पतिवार को बारिश तेज हो सकती है। चीबा में हाल ही में रिकॉर्ड बारिश से भारी नुकसान हुआ था। मौसम एजेंसी मृदा स्खलन और नदियों में बढ़ते जलस्तर के प्रति सतर्क रहने का आह्वान कर रही है। उसका कहना है कि ढीली मिट्टी और तटबंधों को हुए नुकसान के कारण तेज बारिश न होने की स्थिति में भी आपदाओं का खतरा बढ़ सकता है। जापान के पूर्व विदेश मंत्री इवाया ताकेशी ने पेचिंग में चीनी उप प्रधानमंत्री हा लीफान से मुलाकात की। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध सही नहीं है। पिछले साल जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सानाई ने संसद में ताइवान में आपात स्थिति के बारे में एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद जापान और चीन के बीच संबंध बिगड़ गए थे। जापान के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रोत्साहन संघ के प्रमुख इवाया ने पीपल्स ग्रेट हॉल में मंगलवार को चीन की आर्थिक नीतियों के प्रभारी हा लीफान से मुलाकात की। बैठक की शुरुआत में उप प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ जापानी राजनेता सैन्यवाद को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं और ताइवान मुद्दे पर चीन की लक्ष्मण रेखा पार करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के विकास पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ रहा है। उप प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि गलत टिप्पणियों से उत्पन्न कठिनाइयों और विरोधाभासों को दूर करके ही द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक संबंध फिर से आगे बढ़ सकते हैं। इवाया ने जापान और चीन के बीच संबंधों में आई कड़वाहट दूर करने के लिए भरसक प्रयास करने का वादा किया। ऐसा प्रतीत होता है कि चीन इवाया पर दबाव डालकर ताकाइची प्रशासन को नियंत्रण में रखना चाहता है। बैठक के बाद इवाया ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने चीनी पक्ष से चीन में रहने वाले जापानी निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्लभ धातुओं तथा अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के निर्यात को मंजूरी देने की प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के प्रांतीय क्षेत्रों के बीच आर्थिक आदान प्रदान को बढ़ावा भी दिया जाए। इवाया ने कहा कि हालांकि जापान और चीन के बीच संबंध अब भी तनावपूर्ण है, लेकिन उन्हें लगता है कि चीनी पक्ष आर्थिक और निजी क्षेत्र के आदान प्रदान को लेकर सकारात्मक है। उन्होंने आगे कहा कि राजनयिक कठिनाइयों के दौरान बार बार संवाद करना महत्वपूर्ण है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान के एक अस्पताल ने मार्च में सरकार से उपचार के लिए स्वीकृति मिलने के बाद आईपीएस कोशिकाओं से प्राप्त हृदय की मांसपेशी कोशिका शीट का उपयोग करके पहली हृदय शल्य चिकित्सा की है। एनएचके को पता चला है कि यह शल्य चिकित्सा मंगलवार को ओसाका शहर के ओसाका खेसात्सु अस्पताल में की गई थी। सरकारी स्वीकृति मिलने के बाद सितंबर में हृदय की मांसपेशी कोशिकाओं से बनी शीट री हार्ट स्वास्थ्य बीमा के लिए पात्र हो गई है। इन शीट्स को गंभीर हृदय रोग से पीड़ित 50 साल से अधिक आयु के एक मरीज में प्रत्यारोपित किया गया है। सर्जरी लगभग एक घंटे में पूरी हो गई और मरीज की हालत स्थिर बताई जा रही है। अस्पताल के अध्यक्ष सावा योशिकी ने आशा व्यक्त की है कि ये उपचार तेजी से फैलेगा ताकि ये उन लोगों की थोड़ी सी भी मदद कर सके जो समान रोगों से पीड़ित हैं। गौरतलब है कि डॉक्टर सावा आईपीएस सेल शीट विकसित करने के प्रभारी थे और उन्होंने ही ये शल्य चिकित्सा की है। इन शीट्स को कुछ शर्तों के साथ सरकारी मंजूरी मिली है। इनमें आगे की सर्जरी के माध्यम से इनकी सुरक्षा और प्रभावशीलता का सत्यापन करना शामिल है। इन शीट्स को विकसित करने वाली कंपनी का लक्ष्य है कि 2033 तक देश भर के लगभग 20 चिकित्सा केंद्रों में 75 रोगियों में इनका प्रत्यारोपण किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी ने मंगलवार को घोषणा की कि वो इस वर्ष की वार्षिक सभा को नीदरलैंड्स के द हेग शहर में स्थानांतरित करेगा। ये सभा नवंबर के अंत में शुरू होगी। ये कार्यक्रम मूल रूप से दिसंबर में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित होने वाला था, लेकिन अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आईसीसी पर दबाव बना रहे हैं। उनके प्रशासन ने अगस्त में आईसीसी की अध्यक्ष अकाने तोमोको सहित अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंधों की घोषणा की थी। इसके चलते वीजा प्रतिबंधों जैसी चिंताएं उत्पन्न हुई हैं, जिनके कारण अकाने सहित कुछ अधिकारी संभवतः सभा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो पाते। सूत्रों का कहना है कि आयोजन स्थल में बदलाव असामान्य है। मलेशिया ने म्यांमार से 5,000 शरणार्थियों को वापस उनके देश भेजना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि म्यांमार में 2021 में सेना ने तख्ता पलटकर सत्ता हथिया ली थी और उसके बाद से वहां हालात खराब हैं। मंगलवार को स्वदेश वापसी का पहला चरण आरंभ हुआ, जिसमें लगभग 1500 लोगों को वापस भेजा गया। लोगों को बसों से एक बंदरगाह पर ले जाया गया, जहां से उन्हें म्यांमार की नौसेना के जहाजों पर चढ़ाया गया। मलेशिया ने म्यांमार के सैन्य समर्थित अधिकारियों के साथ एक समझौते के तहत पिछले महीने इस योजना की घोषणा की थी। मलेशिया का कहना है कि स्वदेश लौटना पूरी तरह स्वैच्छिक है। ये निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब शरणार्थियों की संख्या और शरणार्थी विरोधी भावनाएं लगातार बढ़ रही थीं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि मलेशिया म्यांमार से आए लगभग 1,90,000 शरणार्थियों को शरण दे रहा है। इनमें से 60% से अधिक अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय रोहिंग्या से हैं, जिन्हें म्यांमार में उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों ने चेताया है कि सेना और लोकतंत्र समर्थक ताकतों व जातीय सशस्त्र गुटों के बीच लड़ाई जारी है और ऐसे में वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं है।
1: इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 31वें पाठ में आप साथ मिलकर कुछ करने का सुझाव देना सीखेंगे।
1: मिया और काइतो हारूसान हाउस में गपशप कर रहे हैं कि तभी माइक भी वहां आ जाता है। माइक अमेरिका से है और उसे जापान की पॉप संस्कृति में विशेष रुचि है।
0: तो आइए सुनते हैं 31वें पाठ की बातचीत।
2: कोंदो नो दोयोबी काइतो तो निंजा हकुबुत्सुकान नी इकिमासु।
3: माइक सान वा होंतो नी निंजा गा सुकी देसु ने।
2: हाई, मिन्ना दे 一緒に行きませんか？
3: ああ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
4: 残念。じゃあ二人で行こう。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले माइक ने ताम और मिया से कहा,
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
0: इस शनिवार काइटो के साथ निंजा संग्रहालय जा रहा हूँ।
1: ये सुनकर मिया ने कहा,
3: माइक सान वा होंतो नी निंजा गा सुकी देसु ने।
1: माइक जी, आपको निंजा सचमुच पसंद है ना?
0: तब माइक ने उन्हें भी साथ चलने को कहा।
2: हाय, मिन्ना दे इश्शो नी इकिमासेन का?
0: हाँ, क्यों ना सब साथ चलें?
1: इस पर मिया ने उत्तर दिया,
3: दोयोबी वा चोट्टो।
1: ओह, शनिवार को तो जरा।
0: ताम ने भी कहा,
3: वाताशी मो जुग्यो गा अरिमास।
1: मेरी भी क्लास है।
0: ये सुनकर काइतो बोला,
4: जानने,
0: ये तो अफसोस की बात है।
4: जा, फ्तारी दे इको।
0: तो फिर हम दोनों चलते हैं।
1: माइक और काइतो जिस संग्रहालय में जाने वाले हैं वो मिए प्रिफेक्चर में है। वहाँ का ईगा उएनो क्षेत्र निंजा के गृहनगर के तौर पर जाना जाता है। संग्रहालय में लोग निंजा के घर देख सकते हैं और उनकी प्रस्तुति का भी आनंद ले सकते हैं। आज का मुख्य वाक्य है,
2: इश्शो नी इकिमासेन का,
1: यानी क्यों ना साथ चलें। ये वाक्य सीखकर आप दूसरों को कहीं साथ चलने के लिए आमंत्रित कर सकेंगे।
0: इस वाक्य में
5: इश्शो नी
0: का अर्थ है साथ में,
5: इकिमासेन
0: है क्रिया,
5: इकु
0: यानी जाना का विनम्र नकारात्मक रूप, और उसके बाद प्रश्नवाचक शब्द का लगाकर आप वाक्य को निमंत्रण में बदल सकते हैं।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि
5: इश्शो नी इकिमासेन का
1: साथ चलने के लिए आमंत्रित करने का तरीका है। इसे बनाने के लिए क्रिया के मास रूप में से मास हटाकर
5: मासेन
1: लगा है और उसके बाद जुड़ा है का, जिसका स्वर ऊंचा है।
0: अब ये वाक्य फिर से सुनिए और साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: इकिमासेन का इश्शो नी इकिमासेन का।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक महिला दूसरी महिला को कहीं साथ चलने का निमंत्रण दे रही है।
6: कोंबन, इश्शो नी गोहान ओ तबे नी इकिमासेन का?
7: ई देसु ने, इकिमाशो।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने दूसरी महिला से पूछा,
6: कोंबन, इश्शो नी गोहान ओ तबे नी इकिमासेन का?
1: क्यों ना आज शाम को साथ खाना खाने चले।
0: यहाँ
5: कोंबन
0: का अर्थ है आज शाम,
5: इश्शो नी
0: का अर्थ है साथ में, और
5: गोहान
0: का मतलब है खाना। तो
5: गोहान ओ तबे नी इकु
0: का मतलब हुआ खाना खाने के लिए जाना।
1: क्रिया
5: इक
1: यानी जाना से बना है
5: इकिमासेन का,
1: जो किसी को साथ में कहीं चलने का सुझाव देने का तरीका है।
0: जवाब में दूसरी महिला ने कहा,
7: ई देसु ने, इकिमाशो।
1: ठीक है, चलते हैं।
5: ई देसु ने
0: का उपयोग किसी की बात मानने के लिए किया जाता है, और
5: इकिमाशो
0: है क्रिया
5: इक
0: यानी जाना का माशो रूप, इसका इस्तेमाल साथ में कुछ करने का सुझाव स्वीकारते समय किया जाता है।
1: पाठ 22 में भी हमने साथ मिलकर कुछ करने का सुझाव देना सीखा था और उस समय माशो का इस्तेमाल किया था, जैसे शाशिंगो तोरी माशो, यानी फोटो खींचते हैं।
0: उसमें और मासेंका में ये अंतर है कि माशो साथ में कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करने का तरीका है, जबकि मासेंका विनम्र तरीके से ये पूछने के लिए है कि दूसरे व्यक्ति के पास साथ चलने का समय है या नहीं।
1: अब वाक्य सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: गोहान ओ तबे नी इकिमासेन का? इश्शो नी गोहान ओ तबे नी इकिमासेन का? कोनबान इश्शो नी गोहान ओ तबे नी इकिमासेन का?
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप अपने मित्रों के साथ बारबेक्यू करना चाहते हैं। सबके साथ को जापानी भाषा में कहेंगे
5: मिन्ना दे,
0: और बारबेक्यू करना के लिए कहेंगे
5: बारबेक्यू ओ सुरु।
0: क्रिया
5: सुरु
0: यानी करना का मास रूप है
5: शिमास।
0: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
4: みんなでバーベキューをしませんか？みんなでバーベキューをしませんか？
1: और अब सीख लेते हैं आज का सहज वाक्य जो मिया की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
3: दोयोबी वा चोट्टो।
0: असल में
5: चोट्टो
0: का अर्थ है जरा। इसकी अंतिम ध्वनि को लंबा खींचते हुए हल्की आवाज में बोलने का भाव है कि आप हिचकते हुए मना कर रहे हैं। तो मना करने के लिए आप बोलेंगे
5: चोट्टो।
1: किसी सुझाव या निमंत्रण को मना करते समय अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाता है। मिया ने कहा
5: तोयोबी वा चोट्टो,
1: जो घुमा फिरा कर ये कहने का तरीका है कि शनिवार को मैं व्यस्त हूँ या नहीं जा सकती।
0: अब उच्चारण करने का अभ्यास कर लेते हैं।
1: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
6: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
2: はい。みんなで一緒に行きませんか？
6: ああ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
4: 残念。じゃあ2人で行こう。
2: マイクと一緒にポップカルチャー。
0: और अब हम लेकर आए हैं अंश माइक के साथ पॉप संस्कृति, जिसमें आज हम बता रहे हैं निंजा के बारे में।
1: निंजा का मुख्य काम था दुश्मन की जानकारी इकट्ठा करना और खुफिया अभियान पूरे करना। उनका इतिहास स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि वे लगभग 15वीं से 16वीं सदी के बीच आपस में लड़ते सामुराई सेनापतियों के दौर में सक्रिय थे।
0: मिए प्रिफेक्चर के ईगा क्षेत्र के निंजा और शिगा प्रिफेक्चर के कोगा क्षेत्र के निंजा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं।
1: उनकी पोशाक देखकर लगता है जैसे वे खुफिया काम करने के लिए ही बने हैं, और दुश्मन के क्षेत्र में प्रवेश करते समय तो निंजा अक्सर वेश बदल लेते थे।
0: मांगा या फिल्मों में निंजा जिस तरह के जादुई कारनामे करते हैं वो अक्सर काल्पनिक होते हैं, लेकिन असली निंजा भी कमाल के होते थे। उनके पास शुरिकेन होते थे, ये सितारे की आकृति का हथियार होता है जिसे दुश्मन पर दूर से फेंक सकते हैं।
1: इसके अलावा निंजा दबे कदम चलते थे ताकि लोग ये न जान पाए कि वो आसपास हैं, और उनके पास धुआं छोड़ने वाले बम भी होते थे।
0: कभी कभी वे मनोविज्ञान की मदद से अपने अभियान पूरे करते थे, और ये माना जाता है कि सामुराई सेनापति प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के रूप में उनका आदर किया करते थे। लेकिन उनके असली काम के बारे में अब भी बहुत कम जानकारी है, शायद इस वजह से ही निंजा इतने लोकप्रिय हैं।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में माइक और काइतो मिए प्रिफेक्चर में निंजा संग्रहालय जाएंगे। तब तक के लिए सायोनारा।
8: HK ワールド国際放送ラジオ日本です。 東京からお送りします。
9: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 30 सितंबर बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रिला जैन और वायला खवानों से सुने समाचार। उष्णकटिबंधीय तूफान सुरिगे बुधवार रात से बृहस्पतिवार सुबह तक मध्यवर्ती टोक्यो के दक्षिण में इजू द्वीप समूह के निकट पहुंच सकता है। तूफान के आने से पहले ही इजू द्वीप समूह पर वर्षा मेघ छा गए हैं, जिससे हाचीजोजीमा द्वीप पर सुबह 10:30 बजे तक 31.5 मिलीमीटर प्रति घंटे की तेज बारिश हुई। क्षेत्र में समय के साथ हवाओं के तेज होने की संभावना है, ऊंची लहरों की भी आशंका है। द्वीप समूह के दक्षिणी भाग में बुधवार रात से लेकर सुबह तक गरज के साथ 50 मिलीमीटर प्रति घंटे की मूसलाधार बारिश का अनुमान है। क्षेत्र के निवासियों से ऊंची लहरों और भूस्खलन के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया जा रहा है। तेज हवाओं, वज्रपात और बवंडरों के प्रति भी सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। टोक्यो के पास चीबा प्रीफेक्चर में बृहस्पतिवार को बारिश तेज हो सकती है। चीबा में हाल ही में रिकॉर्ड बारिश से भारी नुकसान हुआ था। मौसम एजेंसी मृदास्खलन और नदियों में बढ़ते जलस्तर के प्रति सतर्क रहने का आह्वान कर रही है। उसका कहना है कि ढीली मिट्टी और तटबंधों को हुए नुकसान के कारण तेज बारिश न होने की स्थिति में भी आपदाओं का खतरा बढ़ सकता है। जापान के पूर्व विदेश मंत्री इवाया ताकेशी ने पेचिंग में चीनी उप प्रधानमंत्री हा लीफान से मुलाकात की। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध सही नहीं है। पिछले साल जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सानाई ने संसद में ताइवान में आपात स्थिति के बारे में एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद जापान और चीन के बीच संबंध बिगड़ गए थे। जापान के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रोत्साहन संघ के प्रमुख इवाया ने पीपल्स ग्रेट हॉल में मंगलवार को चीन की आर्थिक नीतियों के प्रभारी हा लीफान से मुलाकात की। बैठक की शुरुआत में उप प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ जापानी राजनेता सैन्यवाद को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं और ताइवान मुद्दे पर चीन की लक्ष्मण रेखा पार करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के विकास पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ रहा है। उप प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि गलत टिप्पणियों से उत्पन्न कठिनाइयों और विरोधाभासों को दूर करके ही द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक संबंध फिर से आगे बढ़ सकते हैं। इवाया ने जापान और चीन के बीच संबंधों में आई कड़वाहट दूर करने के लिए भरसक प्रयास करने का वादा किया। ऐसा प्रतीत होता है कि चीन इवाया पर दबाव डालकर ताकाइची प्रशासन को नियंत्रण में रखना चाहता है। बैठक के बाद इवाया ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने चीनी पक्ष से चीन में रहने वाले जापानी निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्लभ धातुओं तथा अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के निर्यात को मंजूरी देने की प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के प्रांतीय क्षेत्रों के बीच आर्थिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना भी को बढ़ावा भी दिया जाए। इवाया ने कहा कि हालांकि जापान और चीन के बीच संबंध अब भी तनावपूर्ण है, लेकिन उन्हें लगता है कि चीनी पक्ष आर्थिक और निजी क्षेत्र के आदान प्रदान को लेकर सकारात्मक है। उन्होंने आगे कहा कि राजनयिक कठिनाइयों के दौरान बार बार संवाद करना महत्वपूर्ण है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान के एक अस्पताल ने मार्च में सरकार से उपचार के लिए स्वीकृति मिलने के बाद आईपीएस कोशिकाओं से प्राप्त हृदय की मांसपेशी कोशिका शीट का उपयोग करके पहली हृदय शल्य चिकित्सा की है। एनएचके को पता चला है कि यह शल्य चिकित्सा मंगलवार को ओसाका शहर के ओसाका खेसात्सु अस्पताल में की गई थी। सरकारी स्वीकृति मिलने के बाद सितंबर में हृदय की मांसपेशी कोशिकाओं से बनी शीट री हार्ट स्वास्थ्य बीमा के लिए पात्र हो गई है। इन शीट्स को गंभीर हृदय रोग से पीड़ित 50 साल से अधिक आयु के एक मरीज में प्रत्यारोपित किया गया है। सर्जरी लगभग एक घंटे में पूरी हो गई और मरीज की हालत स्थिर बताई जा रही है। अस्पताल के अध्यक्ष सावा योशिकी ने आशा व्यक्त की है कि ये उपचार तेजी से फैलेगा ताकि ये उन लोगों की थोड़ी सी भी मदद कर सके जो समान रोगों से पीड़ित हैं। गौरतलब है कि डॉक्टर सावा आईपीएस सेल शीट विकसित करने के प्रभारी थे और उन्होंने ही ये शल्य चिकित्सा की है। इन शीट्स को कुछ शर्तों के साथ सरकारी मंजूरी मिली है। इनमें आगे की सर्जरी के माध्यम से इनकी सुरक्षा और प्रभावशीलता का सत्यापन करना शामिल है। इन शीट्स को विकसित करने वाली कंपनी का लक्ष्य है कि 2033 तक देश भर के लगभग 20 चिकित्सा केंद्रों में 75 रोगियों में इनका प्रत्यारोपण किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी ने मंगलवार को घोषणा की कि वो इस वर्ष की वार्षिक सभा को नीदरलैंड्स के द हेग शहर में स्थानांतरित करेगा। ये सभा नवंबर के अंत में शुरू होगी। ये कार्यक्रम मूल रूप से दिसंबर में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित होने वाला था, लेकिन अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आईसीसी पर दबाव बना रहे हैं। उनके प्रशासन ने अगस्त में आईसीसी के अध्यक्ष अकाने तोमोको सहित अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंधों की घोषणा की थी। इसके चलते वीजा प्रतिबंधों जैसी चिंताएं उत्पन्न हुई हैं, जिनके कारण अकाने सहित कुछ अधिकारी संभवतः सभा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो पाते। सूत्रों का कहना है कि आयोजन स्थल में बदलाव असामान्य है। मलेशिया ने म्यांमार से 5,000 शरणार्थियों को वापस उनके देश भेजना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि म्यांमार में 2021 में सेना ने तख्ता पलटकर सत्ता हथिया ली थी और उसके बाद से वहां हालात खराब हैं। मंगलवार को स्वदेश वापसी का पहला चरण आरंभ हुआ, जिसमें लगभग 1500 लोगों को वापस भेजा गया। लोगों को बसों से एक बंदरगाह पर ले जाया गया, जहां से उन्हें म्यांमार की नौसेना के जहाजों पर चढ़ाया गया। मलेशिया ने म्यांमार के सैन्य समर्थित अधिकारियों के साथ एक समझौते के तहत पिछले महीने इस योजना की घोषणा की थी। मलेशिया का कहना है कि स्वदेश लौटना पूरी तरह स्वैच्छिक है। ये निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब शरणार्थियों की संख्या और शरणार्थी विरोधी भावनाएं लगातार बढ़ रही थीं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि मलेशिया म्यांमार से आए लगभग 1,90,000 शरणार्थियों को शरण दे रहा है। इनमें से 60% से अधिक अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय रोहिंग्या से है, जिन्हें म्यांमार में उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों ने चेताया है कि सेना और लोकतंत्र समर्थक ताकतों व जातीय सशस्त्र गुटों के बीच लड़ाई जारी है और ऐसे में वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं।
1: इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 31वें पाठ में आप साथ मिलकर कुछ करने का सुझाव देना सीखेंगे।
1: मिया और काइतो हारूसान हाउस में गपशप कर रहे हैं कि तभी माइक भी वहां आ जाता है। माइक अमेरिका से है और उसे जापान की पॉप संस्कृति में विशेष रुचि है।
0: तो आइए सुनते हैं 31वें पाठ की बातचीत।
2: कोंदो नो दोयोबी काइतो तो निंजा हकुबुत्सुकान नी इकिमासु।
3: माइक सान वा होंतो नी निंजा गा सुकी देसु ने।
2: हाई, मिन्ना दे 一緒に行きませんか？
3: ああ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
4: 残念。じゃあ、二人で行こう。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले माइक ने ताम और मिया से कहा,
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
0: इस शनिवार काइतो के साथ निंजा संग्रहालय जा रहा हूँ।
1: ये सुनकर मिया ने कहा,
3: माइक सान वा होंतो नी निंजा गा सुकी देसु ने।
1: माइक जी, आपको निंजा सचमुच पसंद है ना?
0: तब माइक ने उन्हें भी साथ चलने को कहा।
2: हाय, मिन्ना दे इश्शो नी इकिमासेन का?
0: हाँ, क्यों ना सब साथ चलें?
1: इस पर मिया ने उत्तर दिया,
3: दोयोबी वा चोट्टो।
1: ओह, शनिवार को तो जरा।
0: ताम ने भी कहा,
3: वताशी मो जुग्यो गा अरिमासु।
1: मेरी भी क्लास है।
0: ये सुनकर काइतो बोला,
4: चान्ने,
0: ये तो अफसोस की बात है।
4: जा, फ्तारी देखो।
0: तो फिर हम दोनों चलते हैं।
1: माइक और काइतो जिस संग्रहालय में जाने वाले हैं, वो मिए प्रिफेक्चर में है। वहाँ का ईगा उएनो क्षेत्र निंजा के गृह नगर के तौर पर जाना जाता है। संग्रहालय में लोग निंजा के घर देख सकते हैं और उनकी प्रस्तुति का भी आनंद ले सकते हैं। आज का मुख्य वाक्य है,
2: इश्शो नी इकिमासेन का,
1: यानी क्यों ना साथ चलें। ये वाक्य सीखकर आप दूसरों को कहीं साथ चलने के लिए आमंत्रित कर सकेंगे।
0: इस वाक्य में
5: इश्शो नी
0: का अर्थ है साथ में,
5: इकिमासेन
0: है क्रिया,
5: इकु
0: यानी जाना का विनम्र नकारात्मक रूप, और उसके बाद प्रश्नवाचक शब्द का लगाकर आप वाक्य को निमंत्रण में बदल सकते हैं।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि
5: इश्शो नी इकिमासेन का
1: साथ चलने के लिए आमंत्रित करने का तरीका है। इसे बनाने के लिए क्रिया के मास रूप में से मास हटाकर
5: मासेन
1: लगा है और उसके बाद जुड़ा है का, जिसका स्वर ऊंचा है।
0: अब ये वाक्य फिर से सुनिए और साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: इकिमासेन का इश्शो नी इकिमासेन का।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक महिला दूसरी महिला को कहीं साथ चलने का निमंत्रण दे रही है।
6: कोंबन, इश्शो नी गोहान ओ तबे नी इकिमासेन का?
7: ई देसु ने, इकिमाशो।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने दूसरी महिला से पूछा,
6: कोंबन, इश्शो नी गोहान ओ तबे नी इकिमासेन का?
1: क्यों ना आज शाम को साथ खाना खाने चले।
0: यहाँ
5: कोंबन
0: का अर्थ है आज शाम,
5: इश्शो नी
0: का अर्थ है साथ में, और
5: गोहान
0: का मतलब है खाना। तो
5: गोहान ओ तबे नी इकु
0: का मतलब हुआ खाना खाने के लिए जाना।
1: क्रिया
5: इक
1: यानी जाना से बना है
5: इकिमासेन का,
1: जो किसी को साथ में कहीं चलने का सुझाव देने का तरीका है।
0: जवाब में दूसरी महिला ने कहा,
7: ई देसु ने, इकिमाशो।
1: ठीक है, चलते हैं।
5: ई देसु ने
0: का उपयोग किसी की बात मानने के लिए किया जाता है, और
5: इकिमाशो
0: है क्रिया
5: इक
0: यानी जाना का माशो रूप, इसका इस्तेमाल साथ में कुछ करने का सुझाव स्वीकारते समय किया जाता है।
1: पाठ 22 में भी हमने साथ मिलकर कुछ करने का सुझाव देना सीखा था और उस समय माशो का इस्तेमाल किया था, जैसे शाशिंगो तोरी माशो, यानी फोटो खींचते हैं।
0: उसमें और मासेंका में ये अंतर है कि माशो साथ में कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करने का तरीका है, जबकि मासेंका विनम्र तरीके से ये पूछने के लिए है कि दूसरे व्यक्ति के पास साथ चलने का समय है या नहीं।
1: अब वाक्य सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: गोहान ओ तबे नी इकिमासेन का? इश्शो नी गोहान ओ तबे नी इकिमासेन का? कोनबान इश्शो नी गोहान ओ तबे नी इकिमासेन का?
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप अपने मित्रों के साथ बारबेक्यू करना चाहते हैं। सबके साथ को जापानी भाषा में कहेंगे
5: मिन्ना दे,
0: और बारबेक्यू करना के लिए कहेंगे
5: बारबेक्यू ओ सुरु।
0: क्रिया
5: सुरु
0: यानी करना का मास रूप है
5: शिमास।
0: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
4: みんなでバーベキューをしませんか？みんなでバーベキューをしませんか？
1: और अब सीख लेते हैं आज का सहज वाक्य जो मिया की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
3: 土曜日はちょっと。
0: असल में
5: ちょっと
0: का अर्थ है जरा। इसकी अंतिम ध्वनि को लंबा खींचते हुए हल्की आवाज में बोलने का भाव है कि आप हिचकते हुए मना कर रहे हैं। तो मना करने के लिए आप बोलेंगे
5: छोटो।
1: किसी सुझाव या निमंत्रण को मना करते समय अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाता है। मिया ने कहा
5: तो यो पिवा छोटो,
1: जो घुमा फिराकर ये कहने का तरीका है कि शनिवार को मैं व्यस्त हूँ या नहीं जा सकती।
0: अब उच्चारण करने का अभ्यास कर लेते हैं।
1: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
6: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
2: はい。みんなで一緒に行きませんか？
6: ああ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
4: 残念。じゃあ二人で行こう。
2: マイクと一緒にポップカルチャー。
0: और अब हम लेकर आए हैं अंश माइक के साथ पॉप संस्कृति, जिसमें आज हम बता रहे हैं निंजा के बारे में।
1: निंजा का मुख्य काम था दुश्मन की जानकारी इकट्ठा करना और खुफिया अभियान पूरे करना। उनका इतिहास स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि वे लगभग 15वीं से 16वीं सदी के बीच आपस में लड़ते सामुराई सेनापतियों के दौर में सक्रिय थे।
0: मिए प्रिफेक्चर के ईगा क्षेत्र के निंजा और शिगा प्रिफेक्चर के कोगा क्षेत्र के निंजा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं।
1: उनकी पोशाक देखकर लगता है जैसे वे खुफिया काम करने के लिए ही बने हैं, और दुश्मन के क्षेत्र में प्रवेश करते समय तो निंजा अक्सर वेश बदल लेते थे।
0: मांगा या फिल्मों में निंजा जिस तरह के जादुई कारनामे करते हैं वो अक्सर काल्पनिक होते हैं, लेकिन असली निंजा भी कमाल के होते थे। उनके पास शुरिकेन होते थे, ये सितारे की आकृति का हथियार होता है जिसे दुश्मन पर दूर से फेंक सकते हैं।
1: इसके अलावा निंजा दबे कदम चलते थे ताकि लोग ये न जान पाए कि वो आसपास हैं, और उनके पास धुआं छोड़ने वाले बम भी होते थे।
0: कभी कभी वे मनोविज्ञान की मदद से अपने अभियान पूरे करते थे, और ये माना जाता है कि सामुराई सेनापति प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के रूप में उनका आदर किया करते थे। लेकिन उनके असली काम के बारे में अब भी बहुत कम जानकारी है, शायद इस वजह से ही निंजा इतने लोकप्रिय हैं।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में माइक और काइतो मिए प्रिफेक्चर में निंजा संग्रहालय जाएंगे। तब तक के लिए सायोनारा।
8: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
9: This is NHK World Radio Japan Tokyo

ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें समाप्त फरमाइए। जापान के एक अस्पताल ने इंड्यूस्ड प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल्स या आईपीएस से हासिल शुदा दिल के अजलाती खलियों की तहों का इस्तेमाल करते हुए दिल का पहला ऑपरेशन किया है। मार्च में हुकूमत की जानिब से इस तरीके का इलाज की मंजूरी के बाद ये अपनी नौयत की पहली सर्जरी है। एनएचके को मालूम हुआ है कि यह ऑपरेशन मंगल को ओसाका सिटी के ओसाका के सत्स अस्पताल में किया गया। कल भी अजलाती खलियों की तहें या री हार्ट हुकूमत की तरफ से मंजूरी के बाद सितंबर में हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे कार में शामिल की गई हैं। इन शीटों की पैबंदकारी ऐसे मरीज में की गई जिसकी उम्र 50 के पेटे में है और उसे दिल का शदीद आर्जा लाहक है। सर्जरी तकरीबन एक घंटे में मुकम्मल हुई और मरीज की हालत मुस्तहकम बताई जाती है। इन शीटों को तैयार करने के इंचार्ज और ऑपरेशन को अंजाम देने वाले अस्पताल के सदर सावा योशिकी ने कहा उन्हें उम्मीद है कि यह इलाज तेजी से आम होगा, लिहाजा इससे उन लोगों की थोड़ी बहुत मदद हो सकेगी जो इस तरह के आर्जे से दोचार हैं। इन शीटों के लिए मशरूत हुकूमती मंजूरी मिली है जिसमें मजीद सर्जरियों के जरिए इनकी हिफाजत और अफादियत की तस्दीक करना शामिल है। इन्हें तैयार करने वाली कंपनी का हदफ 2033 तक मुल्क भर में तकरीबन 20 तिब्बी मराकज में 75 मरीजों में इनकी पैबंदकारी करना है। बैनुल्कवामी फौजदारी अदालत आईसीसी ने मंगल को ऐलान किया है कि इस साल की सालाना असेंबली को नीदरलैंड्स के दी हेग में मुंतकिल कर देगी। असेंबली नवंबर के आखिर में शुरू होती है। असल में यह दिसंबर में न्यूयॉर्क में अकवाम मदहदा के सदर दफ्तर में होनी थी। ताहम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अदालत पर दबाव डालते रहे हैं। उनकी इंतजामिया ने अगस्त में सरबरा अकाने तोमोको समेत आईसीसी की क्यादत पर पाबंदियों का ऐलान किया। इसकी वजह से वीजा पाबंदियों जैसे खदशात पैदा हो गए जो मुमकिन तौर पर अकाने समेत कुछ अहदेदारों को जाती तौर पर असेंबली में शामिल न होने पर मजबूर कर सकती हैं। जराए का कहना है कि मकाम इनेकाद की तब्दीली गैरमामूली है। मलेशिया ने म्यांमार के 5,000 पनागुजीनों को वापस अपने वतन भेजना शुरू कर दिया है, जहां फौज के 2021 में बगावत के जरिए इक्तदार पर कब्जे के बाद से शोरश जारी है। वतन वापसी का पहला मरहला मंगल को शुरू हुआ जब तकरीबन 1500 अफराद को मुल्क बदर कर दिया गया। पनागुजीन बसों के जरिए एक बंदरगाह पर पहुंचे जहां उन्हें म्यांमार की बहरिया के जहाजों पर मुंतकिल किया गया।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 30 सितंबर बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रिला जैन और वायला खवानों से सुने समाचार। उष्णकटिबंधीय तूफान सुरिगे बुधवार रात से बृहस्पतिवार सुबह तक मध्यवर्ती टोक्यो के दक्षिण में इजू द्वीप समूह के निकट पहुंच सकता है। तूफान के आने से पहले ही इजू द्वीप समूह पर वर्षा मेघ छा गए हैं, जिससे हाचीजोजीमा द्वीप पर सुबह 10:30 बजे तक 31.5 मिलीमीटर प्रति घंटे की तेज बारिश हुई। क्षेत्र में समय के साथ हवाओं के तेज होने की संभावना है, ऊंची लहरों की भी आशंका है। द्वीप समूह के दक्षिणी भाग में बुधवार रात से लेकर सुबह तक गरज के साथ 50 मिलीमीटर प्रति घंटे की मूसलाधार बारिश का अनुमान है। क्षेत्र के निवासियों से ऊंची लहरों और भूस्खलन के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया जा रहा है। तेज हवाओं, वज्रपात और बवंडरों के प्रति भी सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। टोक्यो के पास चीबा प्रीफेक्चर में बृहस्पतिवार को बारिश तेज हो सकती है। चीबा में हाल ही में रिकॉर्ड बारिश से भारी नुकसान हुआ था। मौसम एजेंसी मृदा स्खलन और नदियों में बढ़ते जलस्तर के प्रति सतर्क रहने का आह्वान कर रही है। उसका कहना है कि ढीली मिट्टी और तटबंधों को हुए नुकसान के कारण तेज बारिश न होने की स्थिति में भी आपदाओं का खतरा बढ़ सकता है। जापान के पूर्व विदेश मंत्री इवाया ताकेशी ने पेचिंग में चीनी उप प्रधानमंत्री हा लीफान से मुलाकात की। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध सही नहीं है। पिछले साल जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सानाई ने संसद में ताइवान में आपात स्थिति के बारे में एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद जापान और चीन के बीच संबंध बिगड़ गए थे। जापान के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रोत्साहन संघ के प्रमुख इवाया ने पीपल्स ग्रेट हॉल में मंगलवार को चीन की आर्थिक नीतियों के प्रभारी हा लीफान से मुलाकात की। बैठक की शुरुआत में उप प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ जापानी राजनेता सैन्यवाद को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं और ताइवान मुद्दे पर चीन की लक्ष्मण रेखा पार करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के विकास पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ रहा है। उप प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि गलत टिप्पणियों से उत्पन्न कठिनाइयों और विरोधाभासों को दूर करके ही द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक संबंध फिर से आगे बढ़ सकते हैं। इवाया ने जापान और चीन के बीच संबंधों में आई कड़वाहट दूर करने के लिए भरसक प्रयास करने का वादा किया। ऐसा प्रतीत होता है कि चीन इवाया पर दबाव डालकर ताकाइची प्रशासन को नियंत्रण में रखना चाहता है। बैठक के बाद इवाया ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने चीनी पक्ष से चीन में रहने वाले जापानी निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्लभ धातुओं तथा अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के निर्यात को मंजूरी देने की प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के प्रांतीय क्षेत्रों के बीच आर्थिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाए। इवाया ने कहा कि हालांकि जापान और चीन के बीच संबंध अब भी तनावपूर्ण है, लेकिन उन्हें लगता है कि चीनी पक्ष आर्थिक और निजी क्षेत्र के आदान प्रदान को लेकर सकारात्मक है। उन्होंने आगे कहा कि राजनयिक कठिनाइयों के दौरान बार बार संवाद करना महत्वपूर्ण है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान के एक अस्पताल ने मार्च में सरकार से उपचार के लिए स्वीकृति मिलने के बाद आईपीएस कोशिकाओं से प्राप्त हृदय की मांसपेशी कोशिका शीट का उपयोग करके पहली हृदय शल्य चिकित्सा की है। एनएचके को पता चला है कि यह शल्य चिकित्सा मंगलवार को ओसाका शहर के ओसाका खेसात्सु अस्पताल में की गई थी। सरकारी स्वीकृति मिलने के बाद सितंबर में हृदय की मांसपेशी कोशिकाओं से बनी शीट री हार्ट स्वास्थ्य बीमा के लिए पात्र हो गई है। इन शीट्स को गंभीर हृदय रोग से पीड़ित 50 साल से अधिक आयु के एक मरीज में प्रत्यारोपित किया गया है। सर्जरी लगभग एक घंटे में पूरी हो गई और मरीज की हालत स्थिर बताई जा रही है। अस्पताल के अध्यक्ष सावा योशिकी ने आशा व्यक्त की है कि ये उपचार तेजी से फैलेगा ताकि ये उन लोगों की थोड़ी सी भी मदद कर सके जो समान रोगों से पीड़ित हैं। गौरतलब है कि डॉक्टर सावा आईपीएस सेल शीट विकसित करने के प्रभारी थे और उन्होंने ही ये शल्य चिकित्सा की है। इन शीट्स को कुछ शर्तों के साथ सरकारी मंजूरी मिली है। इनमें आगे की सर्जरी के माध्यम से इनकी सुरक्षा और प्रभावशीलता का सत्यापन करना शामिल है। इन शीट्स को विकसित करने वाली कंपनी का लक्ष्य है कि 2033 तक देश भर के लगभग 20 चिकित्सा केंद्रों में 75 रोगियों में इनका प्रत्यारोपण किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी ने मंगलवार को घोषणा की कि वो इस वर्ष की वार्षिक सभा को नीदरलैंड्स के द हेग शहर में स्थानांतरित करेगा। ये सभा नवंबर के अंत में शुरू होगी। ये कार्यक्रम मूल रूप से दिसंबर में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित होने वाला था, लेकिन अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आईसीसी पर दबाव बना रहे हैं। उनके प्रशासन ने अगस्त में आईसीसी की अध्यक्ष अकाने तोमोको सहित अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंधों की घोषणा की थी। इसके चलते वीजा प्रतिबंधों जैसी चिंताएं उत्पन्न हुई हैं, जिनके कारण अकाने सहित कुछ अधिकारी संभवतः सभा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो पाते। सूत्रों का कहना है कि आयोजन स्थल में बदलाव असामान्य है। मलेशिया ने म्यांमार से 5,000 शरणार्थियों को वापस उनके देश भेजना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि म्यांमार में 2021 में सेना ने तख्ता पलटकर सत्ता हथिया ली थी और उसके बाद से वहां हालात खराब हैं। मंगलवार को स्वदेश वापसी का पहला चरण आरंभ हुआ, जिसमें लगभग 1500 लोगों को वापस भेजा गया। लोगों को बसों से एक बंदरगाह पर ले जाया गया, जहां से उन्हें म्यांमार की नौसेना के जहाजों पर चढ़ाया गया। मलेशिया ने म्यांमार के सैन्य समर्थित अधिकारियों के साथ एक समझौते के तहत पिछले महीने इस योजना की घोषणा की थी। मलेशिया का कहना है कि स्वदेश लौटना पूरी तरह स्वैच्छिक है। ये निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब शरणार्थियों की संख्या और शरणार्थी विरोधी भावनाएं लगातार बढ़ रही थीं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि मलेशिया म्यांमार से आए लगभग 1,90,000 शरणार्थियों को शरण दे रहा है। इनमें से 60% से अधिक अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय रोहिंग्या से हैं, जिन्हें म्यांमार में उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों ने चेताया है कि सेना और लोकतंत्र समर्थक ताकतों व जातीय सशस्त्र गुटों के बीच लड़ाई जारी है और ऐसे में वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं है।
1: इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 31वें पाठ में आप साथ मिलकर कुछ करने का सुझाव देना सीखेंगे।
1: मिया और काइतो हारूसान हाउस में गपशप कर रहे हैं कि तभी माइक भी वहां आ जाता है। माइक अमेरिका से है और उसे जापान की पॉप संस्कृति में विशेष रुचि है।
0: तो आइए सुनते हैं 31वें पाठ की बातचीत।
2: कोंदो नो दोयोबी काइतो तो निंजा हकुबुत्सुकान नी इकिमासु।
3: माइक सान वा होंतो नी निंजा गा सुकी देसु ने।
2: हाई, मिन्ना दे 一緒に行きませんか？
3: ああ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
4: 残念。じゃあ、二人で行こう。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले माइक ने ताम और मिया से कहा,
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
0: इस शनिवार काइतो के साथ निंजा संग्रहालय जा रहा हूँ।
1: ये सुनकर मिया ने कहा,
3: माइक सान वा होंतों नी निंजा गा सुकी देसु ने।
1: माइक जी, आपको निंजा सचमुच पसंद है ना?
0: तब माइक ने उन्हें भी साथ चलने को कहा।
2: हाय, मिन्ना दे इश्शो नी इकिमासेन का?
0: हाँ, क्यों ना सब साथ चलें?
1: इस पर मिया ने उत्तर दिया,
3: दोयोबी वा चोट्टो।
1: ओह, शनिवार को तो जरा।
0: ताम ने भी कहा,
3: वताशिमो जुग्यो गा अरिमास।
1: मेरी भी क्लास है।
0: ये सुनकर काइतो बोला,
4: जानने,
0: ये तो अफसोस की बात है।
4: जा, फ्तारी देखो।
0: तो फिर हम दोनों चलते हैं।
1: माइक और काइतो जिस संग्रहालय में जाने वाले हैं, वो मिए प्रिफेक्चर में है। वहाँ का ईगा उएनो क्षेत्र निंजा के गृह नगर के तौर पर जाना जाता है। संग्रहालय में लोग निंजा के घर देख सकते हैं और उनकी प्रस्तुति का भी आनंद ले सकते हैं। आज का मुख्य वाक्य है,
2: इश्शो नी इकिमासेन का,
1: यानी क्यों ना साथ चलें। ये वाक्य सीखकर आप दूसरों को कहीं साथ चलने के लिए आमंत्रित कर सकेंगे।
0: इस वाक्य में
5: इश्शो नी
0: का अर्थ है साथ में,
5: इकिमासेन
0: है क्रिया,
5: इकु
0: यानी जाना का विनम्र नकारात्मक रूप, और उसके बाद प्रश्नवाचक शब्द का लगाकर आप वाक्य को निमंत्रण में बदल सकते हैं।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि
5: इश्शो नी इकिमासेन का
1: साथ चलने के लिए आमंत्रित करने का तरीका है। इसे बनाने के लिए क्रिया के मास रूप में से मास हटाकर
5: मासेन
1: लगा है और उसके बाद जुड़ा है का, जिसका स्वर ऊंचा है।
0: अब ये वाक्य फिर से सुनिए और साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: इकिमासेन का, इश्शो नी इकिमासेन का।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं, जिसमें एक महिला दूसरी महिला को कहीं साथ चलने का निमंत्रण दे रही है।
6: कोंबन, इश्शो नी गोहान ओ तबे नी इकिमासेन का?
7: ई देसु ने, इकिमाशो।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने दूसरी महिला से पूछा,
6: कोंबन, इश्शो नी गोहान ओ तबे नी इकिमासेन का?
1: क्यों ना आज शाम को साथ खाना खाने चले।
0: यहाँ
5: कोंबन
0: का अर्थ है आज शाम,
5: इश्शो नी
0: का अर्थ है साथ में, और
5: गोहान
0: का मतलब है खाना। तो
5: गोहान ओ तबे नी इकु
0: का मतलब हुआ खाना खाने के लिए जाना।
1: क्रिया
5: इक
1: यानी जाना से बना है
5: इकिमासेन का,
1: जो किसी को साथ में कहीं चलने का सुझाव देने का तरीका है।
0: जवाब में दूसरी महिला ने कहा,
7: ई देसु ने, इकिमाशो।
1: ठीक है, चलते हैं।
5: ई देसु ने
0: का उपयोग किसी की बात मानने के लिए किया जाता है, और
5: इकिमाशो
0: है क्रिया
5: इक
0: यानी जाना का माशो रूप, इसका इस्तेमाल साथ में कुछ करने का सुझाव स्वीकारते समय किया जाता है।
1: पाठ 22 में भी हमने साथ मिलकर कुछ करने का सुझाव देना सीखा था और उस समय माशो का इस्तेमाल किया था, जैसे शाशिंगो तोरी माशो, यानी फोटो खींचते हैं।
0: उसमें और मासिंका में ये अंतर है कि माशो साथ में कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करने का तरीका है, जबकि मासिंका विनम्र तरीके से ये पूछने के लिए है कि दूसरे व्यक्ति के पास साथ चलने का समय है या नहीं।
1: अब वाक्य सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: गोहान ओ तबे नी इकिमासेन का? इश्शो नी गोहान ओ तबे नी इकिमासेन का? कोनबान इश्शो नी गोहान ओ तबे नी इकिमासेन का?
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप अपने मित्रों के साथ बारबेक्यू करना चाहते हैं। सबके साथ को जापानी भाषा में कहेंगे
5: मिन्ना दे,
0: और बारबेक्यू करना के लिए कहेंगे
5: बारबेक्यू ओ सुरु।
0: क्रिया
5: सुरु
0: यानी करना का मास रूप है
5: शिमास।
0: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
4: みんなでバーベキューをしませんか？みんなでバーベキューをしませんか？
1: और अब सीख लेते हैं आज का सहज वाक्य जो मिया की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
3: दोयोबी वा चोट्टो।
0: असल में
5: चोट्टो
0: का अर्थ है जरा। इसकी अंतिम ध्वनि को लंबा खींचते हुए हल्की आवाज में बोलने का भाव है कि आप हिचकते हुए मना कर रहे हैं। तो मना करने के लिए आप बोलेंगे
5: चोट्टो।
1: किसी सुझाव या निमंत्रण को मना करते समय अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाता है। मिया ने कहा
5: तोयोबी वा चोट्टो,
1: जो घुमा फिराकर ये कहने का तरीका है कि शनिवार को मैं व्यस्त हूँ या नहीं जा सकती।
0: अब उच्चारण करने का अभ्यास कर लेते हैं।
1: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
6: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
2: はい。みんなで一緒に行きませんか？
6: ああ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
4: 残念。じゃあ2人で行こう。
2: マイクと一緒にポップカルチャー。
0: और अब हम लेकर आए हैं अंश माइक के साथ पॉप संस्कृति, जिसमें आज हम बता रहे हैं निंजा के बारे में।
1: निंजा का मुख्य काम था दुश्मन की जानकारी इकट्ठा करना और खुफिया अभियान पूरे करना। उनका इतिहास स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि वे लगभग 15वीं से 16वीं सदी के बीच आपस में लड़ते सामुराई सेनापतियों के दौर में सक्रिय थे।
0: मिए प्रिफेक्चर के ईगा क्षेत्र के निंजा और शिगा प्रिफेक्चर के कोगा क्षेत्र के निंजा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं।
1: उनकी पोशाक देखकर लगता है जैसे वे खुफिया काम करने के लिए ही बने हैं, और दुश्मन के क्षेत्र में प्रवेश करते समय तो निंजा अक्सर वेश बदल लेते थे।
0: मांगा या फिल्मों में निंजा जिस तरह के जादुई कारनामे करते हैं वो अक्सर काल्पनिक होते हैं, लेकिन असली निंजा भी कमाल के होते थे। उनके पास शुरिकेन होते थे। ये सितारे की आकृति का हथियार होता है जिसे दुश्मन पर दूर से फेंक सकते हैं।
1: इसके अलावा निंजा दबे कदम चलते थे ताकि लोग ये न जान पाए कि वो आसपास हैं, और उनके पास धुआं छोड़ने वाले बम भी होते थे।
0: कभी कभी वे मनोविज्ञान की मदद से अपने अभियान पूरे करते थे, और ये माना जाता है कि सामुराई सेनापति प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के रूप में उनका आदर किया करते थे। लेकिन उनके असली काम के बारे में अब भी बहुत कम जानकारी है। शायद इस वजह से ही निंजा इतने लोकप्रिय हैं।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में माइक और काइतो मिए प्रिफेक्चर में निंजा संग्रहालय जाएंगे। तब तक के लिए सायोनारा।
8: रेडियो जापान टोक्यो।

0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें समाप्त फरमाइए। जापान के एक अस्पताल ने इंड्यूस्ड प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल्स या आईपीएस से हासिल शुदा दिल के अजलाती खलियों की तहों का इस्तेमाल करते हुए दिल का पहला ऑपरेशन किया है। मार्च में हुकूमत की जानिब से इस तरीके इलाज की मंजूरी के बाद ये अपनी नौयत की पहली सर्जरी है। एनएचके को मालूम हुआ है कि यह ऑपरेशन मंगल को ओसाका सिटी के ओसाका के सत्स अस्पताल में किया गया। कल भी अजलाती खलियों की तहें या री हार्ट हुकूमत की तरफ से मंजूरी के बाद सितंबर में हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे कार में शामिल की गई हैं। इन शीटों की पैबंदकारी ऐसे मरीज में की गई जिसकी उम्र 50 के पेटे में है और उसे दिल का शदीद आर्जा लाहक है। सर्जरी तकरीबन एक घंटे में मुकम्मल हुई और मरीज की हालत मुस्तहकम बताई जाती है। इन शीटों को तैयार करने के इंचार्ज और ऑपरेशन को अंजाम देने वाले अस्पताल के सदर सावा योशिकी ने कहा उन्हें उम्मीद है कि यह इलाज तेजी से आम होगा, लिहाजा इससे उन लोगों की थोड़ी बहुत मदद हो सकेगी जो इस तरह के आर्जे से दोचार हैं। इन शीटों के लिए मशरूत हुकूमती मंजूरी मिली है जिसमें मजीद सर्जरियों के जरिए इनकी हिफाजत और अफादियत की तस्दीक करना शामिल है। इन्हें तैयार करने वाली कंपनी का हदफ 2033 तक मुल्क भर में तकरीबन 20 तिब्बी मराकज में 75 मरीजों में इनकी पैबंदकारी करना है। बैनुल्कवामी फौजदारी अदालत आईसीसी ने मंगल को ऐलान किया है कि इस साल की सालाना असेंबली को नीदरलैंड्स के दी हेग में मुंतकिल कर देगी। असेंबली नवंबर के आखिर में शुरू होती है। असल में ये दिसंबर में न्यूयॉर्क में अकवामे मदहदा के सदर दफ्तर में होनी थी। ताहम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अदालत पर दबाव डालते रहे हैं। उनकी इंतजामिया ने अगस्त में सरबरा अकाने तोमोको समेत आईसीसी की क्यादत पर पाबंदियों का ऐलान किया। इसकी वजह से वीजा पाबंदियों जैसे खदशात पैदा हो गए जो मुमकिन तौर पर अकाने समेत कुछ अहदेदारों को जाती तौर पर असेंबली में शामिल न होने पर मजबूर कर सकती हैं। ज़राए का कहना है कि मकामे इनेकात की तब्दीली गैर मामूली है। मलेशिया ने म्यांमार के 5,000 पनागुजीनों को वापस अपने वतन भेजना शुरू कर दिया है, जहां फौज के 2021 में बगावत के जरिए इक्तदार पर कब्जे के बाद से शोरश जारी है। वतन वापसी का पहला मरहला मंगल को शुरू हुआ जब तकरीबन 1500 अफराद को मुल्क बदर कर दिया गया। पनागुजीन बसों के जरिए एक बंदरगाह पर पहुंचे जहां उन्हें म्यांमार की बहरिया के जहाजों पर मुंतकिल किया गया। मलेशिया ने इस मंसूबे का ऐलान गुज़िश्ता माह म्यांमार के फौजी हमायत याफ्ता हुक्काम के साथ एक मुआहदे के तहत किया था। कुआलालंपुर का कहना है कि वतन वापसी का अमल मुकम्मल तौर पर रजाकाराना है। यह फैसला ऐसे वक्त किया गया है कि जब मुहाजरीन की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा था और महाजर मुखालिफ जज्बात बढ़ रहे थे। अकवामे मुत्तहिदा का कहना है कि मलेशिया म्यांमार के तकरीबन 1,90,000 महाजरीन की मेजबानी कर रहा है। 60% से ज्यादा पनागुजीन रोहिंग्या मुसलमान अकलियत हैं जिन्हें अपने मुल्क में जबरो इस्तबदाद का सामना है। अकवामे मुत्तहिदा और इंसानी हकूक की तंजीमों ने खबरदार किया है कि फौज और जमहूरियत की हामी कुवतों में झड़पों के साथ साथ नस्ली मुसल्ला ग्रोहों के दरमियान जारी लड़ाई के माहौल में पनागुजीनों की महफूज वापसी के लिए सूरत हाल साजगार नहीं है।
1: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।